मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 20 जून 2026 सवेरे के ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन

0: और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Parakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External

सरदुल सिकंदर की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुने विपिन सचदेवा की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ हम बातों में ऊपर के लिए करने का नहीं है, जो हमारे अंतरतम गहराइयों में जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर में बदलाव लाना। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे हमारा व्यवहार, चाहे हमारा रिश्ते, जो कुछ भी हमारा साथ में जो कुछ भी चल रहा है, उसका मुख्य रूप से कारण हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को अगर हमको समझना है, तो जब हम मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, तब हमारे अंदर में जो विचारों का श्रृंखला चलता है, विचारों का श्रृंखला किस आधार पर है, इनको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किसी दूसरे को बताने के लिए हैं और दूसरे के साथ में व्यवहार करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया। नहीं, हमारा जो विचारों का श्रृंखला है किस तरह चलता है, हम अकेले में उस स्तर पर जहाँ पर विचार शुरू हो रहे हैं और वो विचार किस किस्म के हैं, इनको हमें पहचानना होगा। इस तरह पहचान करके अगर हम हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर कोई शक शक शक नज़र से दूसरे को देखता है और कुछ खो दे रहा हूँ ऐसा सोचता है, और हमेशा दूसरे से पाने के लिए और कुछ भी दूसरे को ना देने का एक व्यवहार बहुत बड़ा नकारात्मक सोच बन गया। और मोर देन 50-60% जो घरेलू महिलाएं हैं और उनके अंदर में डिप्रेशन पाया जा रहा है, इन सब का कारण नकारात्मक सोच है। क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की हमारा सोच ऐसा नेगेटिव अप्रोच में बढ़ता जा रहा है। अगले पल में क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अगर हम सोचते हैं तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ना हो ऐसा नहीं, जो चाहिए वो हमको चाहत उस पे प्रति बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं लेट दफ्तर नहीं पहुंचूं, इसका मतलब डेफिनेटली मैं दफ्तर लेट ही पहुंचूंगा। फिर हमको कैसे बदलना होगा इसको, मैं दफ्तर टाइम पे पहुंच गया, मैं दफ्तर में पहुंच गया और मैं अपना काम कर रहा हूं। इस तरह सकारात्मक सोच बदले, तो ये मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से संभव है। इस तरह हम अपना मेंटल एटीट्यूड को हमारे प्रति और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जो हमारा देश के राष्ट्र के प्रति

0: सोच है, हर कोई व्यक्ति दूसरे को दोष देने में लगा हुआ है, सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़ गए, माहौल बिगड़ गया, ये सब दूसरे को दोष ठहराना बहुत आम बात हो गई। लेकिन हकीकत में बिगड़ा हुआ कोई दूसरा नहीं है, हमारे अंदर में ही है। ये कब पहचानत में आएगा? जब मैं अपने आप को देखूंगा और मेरा विचारधारा को। इसके लिए मौन बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम कुछ देर के लिए, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए ही सही, आप जो ध्यान का प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय में अपना विचार श्रृंखला को आप देखें और उसके बारे में सोचें। अगर मेरा विचार श्रृंखला अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, और तब हमारा जीवन बदलेगा और समाज बदलेगा।
1: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे चिंतन।

आपसे कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहर वास्ते। इसमें आज आप जानकारी लेंगे बीजोपचार के लाभ और साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन। मानस गान भाग संख्या 280 आप सुनेंगे 7:20 पर। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे जल है तो कल है, जीवों पर दया, समय का सदुपयोग। सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। मरुमंगल ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 9:10 पर। इसमें कलाकार होंगे नेक मोहम्मद लंगा और पार्टी। 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लगातार आप सुनेंगे 11 बजे तक 12 बजे तक आप ये कार्यक्रम सुनते रहेंगे। 12:05 पर आप सुनेंगे अनुरोध गीत फरमाइशी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 12:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। खेत खलियान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे रिश्तों की मजबूती समय सफल जीवन का एक आधार है, क्रेडिट कार्ड को का करें सही इस्तेमाल, रसोई की शान भारतीय मसाले और काम की कुछ और टिप्स आपको बताई जाएंगी। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम। तीन 3:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त के विमोचन, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ताकेश्वर से सजीव।

प्रसारण आप सुनेंगे 3:55 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। इसमें एक वार्ता आप सुनेंगे भारत के लोकगीत नए राजस्थान के वाहक वार्ताकार मुस्कान सेन। शाम 6:05 पर सुनेंगे सराकी कार्यक्रम। शाम 7 बजे सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। 7:45 पर सुनेंगे फिल्म संगीत भक्ति संगीत, इस कार्यक्रम आप सुनते हैं। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं। 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, ये हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। तो ये थे कुछ खास कार्यक्रम, उनके समय के बारे में जानकारी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्य

0: कांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves, Santali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of SEBI held

0: by yesterday. The SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing category for small value claims to enable faster processing with reduced documentation. The regulator has also enhanced simplified documentation limits, removed mandatory PAN submission in certain cases, and accepted QR code-enabled death certificates to ease verification. SEBI has also approved the reintroduction of open market share buybacks through stock exchanges from 1st August this year with revised timelines and stricter compliance norms. The board has also allowed mutual funds to undertake intraday borrowings to manage temporary liquidity mismatches. The Supreme Court has expressed serious concern over what it described as a deep-rooted nexus between banks, asset reconstruction companies and borrowers, questioning the manner in which large loan defaults are being settled. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohan observed that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said that it was concerned about the misutilization of public money, which should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने खेती हरा वास्ते। इसमें आज आप जानकारी ले रहे हैं बीजों उपचार के लाभ।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा फसलां बीज उपचार को महत्व के है आप आज जाननी आपने किसान भाइयों वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में देखा आप कोई भी फसल बुआई करा तो बिंग माँ अनेक भांत का कीट अनेक भांत का रोग वह लाग जाए और बंग वो ध्यान तो रखना ही चाहिए साग साग ई बात ने भी जाननी चाहिए कि अगर आप फसलों को बीज ने उपचार कर लेवा तो बिंग महत्व कितों को जे बिंग बाद अपन के फायदा हुआ के लाभ है और के जानकारी ले गेर आप ई बात ने जाना कि बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो किसान भाइयों सगली फसलों का बीज मुख्य रूप से बीज और मृदा जनित रोग और नाशी जीवाशु प्रभावित हुए जका के फसल के बीजा ने उगने और बाकी बढ़वार करने में प्रभावित करे बने यानी कि बढ़वार जिकी है वह कम करे इनके अलावा किसान भाइयों बीज उपचार के तहत कीटनाशी जैविक कीटनाशी की निर्धारित मात्रा बीजा ने समान रूप से उगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे जबकि देश के बहुत सा किसान इसे है जगह बीज उपचार से अनभिज्ञ है बन पूरी जानकारी कोनी और ई प्रक्रिया ने वह अपनावे कोनी अगर किसान ई प्रक्रिया ने अपनावे तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि आ एक वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत जानकारी आ जाए और बीजा ने उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए और बन बीज उपचार को महत्व जानना चाहिए किसान भाइयों बीज उपचार कीट और रोगों से छुटकारा पाने को एक आसान तरीको है बहुत ही सस्तो तरीको है बहुत ही कम खर्चीलो तरीको है इन अंतर्गत दवाई की 2-10 ग्राम प्रति मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज के वास्ते पर्याप्त सर है और इशु वातावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव हुए आ सबसे बड़ी बात है पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होनी तो आपने किसान भैया ने मामूली सी दवा लेगी और बीज उपचार करके और बुआई करना चाहिए कोई भी फसल को बीज उपचार करे बे तो बहुत ही बढ़िया बात है ई महत्व ने समझना चाहिए ई बात ने जानना चाहिए किसान भाइयों वो देखी गई है कि किसान 70% खुद को उत्पादित बीज चाहे वे कोई भी फसल बुआई करे यानी खेत के मान जकी फसल बीजी और बीच जो कि जो को अन्न प्राप्त हुए या जकी भी चीज़ प्राप्त हुई फसल प्राप्त हुई बिंगो ही बीज लेकर इस्तेमाल करे जको के आम खास आप देखा कि वो उपचारित कौन ही होनी और किसान भाई बिना उपचारित भी कौन करे नहीं और सीधो ही खेत के माँ बुआई कर दिए तो भी बाद के माँ फसल के माँ अनेक भांत का कीट अनेक भांत का रोग जगह वह आ जाए किसान भाइयों आम खास देखी गई है कि बीज उपचार के वास्ते बीज उपचार ड्रम को प्रयोग करना हुए जगह से बीज ने अच्छी तरह आप उपचारित कर सकें बीज के ऊपर दवाई की पतली परत बन जाए तो ई बात ने समझना चाहिए किसान भैया ने आ एक महत्वशाली बात है जानकारी होनी चाहिए बीज उपचार के टाइम शरीर ने पूरा ढकन वाला कपड़ा यानी कि पूरा बाजू का कपड़ा बाजूदार कपड़ा कमीज पूरी पैंट चश्मा

0: दस्ताना, चेहरे पर मास्क आंगो जरूर जरूर प्रयोग करना चाहिए। खुले मुंह या खुले चेहरे से आपा ना वो बीज उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ जो है बांगो जहरीलो प्रभाव जो है वो अपने शरीर पर पड़ सके। अगर आप पूरा बाजू की कमीज, पूरी पैंट, चश्मा, दस्तानो पहन गए और फिर आप काम करेंगा तो कोई नुकसान को नहीं हुए नहीं। किसान भाइयों, बीज उपचार से बीजा को अच्छो अंकुरण हुए, अच्छी बढ़वार, कीट और बीमारियां पर रोकथाम पहले दिन से शुरू हो जाए, परिणाम वो हुए कि स्वस्थ पौधा तैयार होएगा और उत्पादन अपनों बढ़ेगा। तो इन वास्ते किसान भाइयों ये महत्व ने जानना चाहिए कि फसलों को बीज उपचार करके आप बुआई करा। ऐ सारी बातों ने ध्यान में रखता थका आपने देश की सरकार देशव्यापी अभियान चला के भी खरीफ फसलों को बीज उपचार करने को एक सुनिश्चित तरीको अपनावे और बहुत ही बढ़िया बात है, ईश्व अपने किसान भाइयों लाभ मिले। सगड़ा कीटनाशी उद्योग संगठन, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि क्लब, महिला संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वे भी खुद इन अभियान ने सफल बनाने वास्ते सक्रिय भूमिका निभागी और अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग करें तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। ईशु आम और खास किसान ने पूरी जानकारी हो जाए तो वह इन बात ने समझ लिया और पूरी तरह बीज ने उपचारित करके फिर खेती करे तो लाभ ज़्यादा मिले। और इनके अलावा ज़रूरी बात आई कि किसानों ने चाहिए कि देश हित में, खुद के हित में और पूरे समाज के हित में इन बात ने जाने बे और बीज ने बिना उपचारित करे कतई खेत में न बुआई करे। इन काम खातर नज़दीक को कोई कृषि अधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि अनुसंधान केंद्र है तो बठूँ, या कोई और संगठन है तो बठूँ भी आपने किसान जगह वह सहायता प्राप्त कर सके, लाभ ले सके। तो आप बात का ध्यान जरूर आपने किसान भाई रखेगा। पर अब है किसान भाइयों हूँ चालू, राम राम सा राम राम।
1: बीजोपचार के लाभ अभी कार्यक्रम खेती रास्ते में जानकारी आपने ली। आइए अब सुने लोक भजन, कलाकार है सोनाराम और पार्टी।

इसी लोक भजन के साथ ही आज का खेती नमस्ते कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुई है। कार्यक्रम आप सुने मानस गान भाग संख्या 280।

लंका में पवनसुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? तुम जैसे चोर उचक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मानस गान भाग संख्या 280। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:30 हुए कार्यक्रम आप सुने सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, पहले ही बात करें, जल है तो कल है, बात बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि जल ही हमारे कल यानी कि भविष्य को निर्धारित करता है। पृथ्वी का केवल 0.5% पानी ही पीने योग्य है। आज जल संरक्षण जैसे वर्षा का पानी बचाना, कोई पानी की लीकेज है तो वो ठीक करना, ये जल संकट से बचने का एकमात्र उपाय है। जितना हमें पानी चाहिए उतना ही हम इस्तेमाल करें तो पानी हमारा संरक्षित रहेगा। श्रोताओं, पानी के बिना मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति का जीवन संभव नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। यह न सिर्फ हमारी दैनिक जरूरत है बल्कि हमारी कृषि और उद्योगों का मुख्य आधार भी है। छतों के पानी, इसमें हम ये कर सकते हैं, जब भी वर्षा होती है तो उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं और छतों के पानी को व्यर्थ न जाने दें बल्कि उसे टैंकों में जमा करें या जमीन में जाने दें। दिनचर्या में हम बात करते हैं, ब्रश करते समय नल बंद रखें, हम खुला छोड़ देते हैं और पानी व्यर्थ बह जाता है। किसी प्रकार की घर में अगर पानी का रिसाव है, लीकेज है, तो उसे ठीक करें। पुनः उपयोग हमें जल का यानी कि वाटर प्यूरिफायर से निकलने वाले पानी और सब्जियों को धोने के काम के लिए किए गए पानी इस्तेमाल पौधों में हम कर सकते हैं। श्रोताओं, पानी हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है, इसलिए आज की छोटी सी बचत कल के सुरक्षित जीवन का निर्माण हम कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर हम करते हैं तो पानी हमारा संरक्षित होगा, और जब पानी संरक्षित होगा तो हम कल के जीवन के बारे

हम सोच सकते हैं, क्योंकि बिना पानी तो संभव नहीं जीवन का जो आने वाला कल है। इसलिए पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जितना हो सके उसे बचाएं, जितना हो सके उसे इस्तेमाल कम से कम ज़रूरत के हिसाब से हमें करना चाहिए। बात हम और भी करेंगे, आइए ये सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम शोर, और इसे गाया था लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। गीतकार राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, बात करें जीवों पर दया की। सभी जीवों के प्रति करुणा दया रखना सच्ची मानवता और धर्म का मूल है। बेजुबान जानवरों और पक्षियों को भी हमारे तरह दर्द, भूख, भावनाओं का अनुभव होता है। उनके साथ सह अस्तित्व की भावना रखना और उन्हें जीने का अधिकार देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। श्रोताओं, चिलचिलाती गर्मी और अन्य मौसम में छत या बालकनी में पक्षियों के लिए पानी और दाना अवश्य रखें। जैसे आजकल का समय जो चल रहा है, आवारा पशुओं को तंग न करें, और यदि संभव हो तो गाय, कुत्ते या पक्षियों को आश्रय दें। घायल या संकट में पड़े जीवों की मदद करें, उन्हें क्रूरता से बचाएं। श्रोताओं, सभी जीव जंतु हमारी प्रकृति और खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ये न माने कि कोई भी जीव इस धरती पर कहीं भी किसी संस्करण से जुड़ा हुआ, श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। जीव सेवा के सेवक को अपार शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। अगर हम जीवों की सेवा करते हैं, बड़ी ही शांति प्रतीत होती है। हमें करुणा और अहिंसा का भाव समाज से हिंसा को कम करता है। यानी जीवों पर दया हमें सदैव रखनी चाहिए। और हमें इसके बारे में सभी को शिक्षा भी देनी चाहिए। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी बताना चाहिए कि जीवों पर दया करें, करुणा रखें, क्योंकि सभी इस संसार में एक हिस्सा है, हमारी प्रकृति का हिस्सा भी है। एक दूसरे से सभी जुड़े हैं। और जैसे कि बात मैंने की, गाय, कुत्ते, बिल्ली, जो भी पालतू बेसहारा जानवर हैं, उन्हें रोटी या भोजन हम दे सकते हैं। पेड़ों और पौधों की कटाई करते समय ध्यान रखें कि पक्षियों के घोंसले न टूट जाएं, वो उनका आसरा है। अपने मनोरंजन के लिए कभी भी जानवरों को पिंजरों में बंद न करें और न ही उन पर भारी बोझ लादें।

और यदि कोई जानवर घायल है तो उसका इलाज करवाएं। हमारे यहाँ चिकित्सालय की व्यवस्था भी है। तो यही है कि हम सभी जीवों पर, जीव हैं हमारे, उन पर दया करें, उन्हें कभी मारे नहीं। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी, और इसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए बात करें समय का।

सदुपयोग। समय का सदुपयोग का अर्थ है कि अपने समय को सही और उपयोगी कार्यों में लगाना। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो व्यक्ति अपने दिन की योजना बनाकर यानी एक प्लानिंग से काम करे तो जीवन में अवश्य सफल होता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्रोताओं, योजना बनाना, प्रत्येक दिन हम जो भी काम करें, हर दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की एक प्राथमिकता सूची यानी टू डू लिस्ट बनाएं और उन्हें समय सीमा दें कि कब कब मुझे क्या काम करना है, वो निर्धारित कर दें। किसी भी काम को कल पर न टालें। जो लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो काम सबसे महत्वपूर्ण हो और कठिन हो उन्हें दिन के शुरुआती घंटों में हमें पूरा कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत और टीवी देखने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। पढ़ाई, काम के साथ साथ मनोरंजन और आराम के लिए भी समय निर्धारित करें ताकि हमें तनाव न हो। श्रोताओं, सभी सही समय जो प्रबंधन से आप अगर आप काम करते हैं तो अपने जीवन और करियर के लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। समय की पाबंदी हमें एक अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। समय की महत्ता को समझने और उसे उसी दिशा में काम करने के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान के लेखों की हम मदद ले सकते हैं जो आपको अपने जीवन की अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, पूजा पाठ का जो नित्य क्रम है वो भी हमें एक हमारी जो आत्मिक शांति है मन को शांत करता है। ठीक है, हम भगवान की पूजा करते हैं, जो भी भगवान है, ईश्वर है, पर मन की शांति इससे हमें ज़रूर मिलती है। अपना दैनिक जो कार्यक्रम है वो सेट करके चलें, दिनचर्या सेट करें कि किस किस समय मुझे क्या काम करना है, तो इससे हमें समय का जो सदुपयोग है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। आइए सुने ये गीत।

तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। गीत आपने सुना भूतनाथ फिल्म से हमने लिया था। हरिहरन सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व

0: को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी

0: संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं

0: कंडक्टर इको निज़ाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल गई हैं। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन 2M का आगाज़ किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन 2M के तहत इको निज़ाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिसमें सेटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियाँ इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर खुदबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवीत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
0: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि ये इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक़िद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज़ के तरीक़ेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट।

0: के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निज़ाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौइयत के दीगर इकदामात इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल SKM मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फराहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाब्ता जाती फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और QR कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निज़ाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये निज़ाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबैन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ये 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आज़म कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क़्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मजाफात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोना प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक़वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपये की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी

0: बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8:45 हुए। कार्यक्रम आप सुने सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप अनूप जलोड़ा के गाए कुछ भक्ति गीत आप सुनें।

0: इसी भक्ति रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
2: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट

0: राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
1: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जनसुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजि दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान रहे हैं
2: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता।
1: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को ये दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से सेना, पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से

किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजि दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कैसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

जी आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने मरुमंगल, कलाकार हैं नेक मोहम्मद लंगा और पार्टी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में सुन रहे हैं मोरमंगल कलाकार हैं अनीक मोहम्मद लंगा और पार्टी कॉर्डन सिटी चैनल से इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।
1: इधर इधर

इसी लोकगीत के साथ ही आज का मरुमंगल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने नेक मोहम्मद लंगा और पार्टी की आवाज़ में कुछ लोक गीत सुने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:30 हुए कार्यक्रम आप सुने फिल्म संगीत।

नेक मोहम्मद लंगा और पार्टी की आवाज़ में कुछ लोक गीत सुने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:30 हुए कार्यक्रम आप सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता, मंत्राल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था खट्टा मीठा और इसे आवाज दी थी के सुनिधि चौहान ने। गीतकार इरशाद कमिल और संगीत था प्रीतम का। आइए अब सुने फिल्म कच्चे धागे का ये गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत नशरत फतेह अली खान। आइए सुने ये गीत।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिर से स्वागत है कार्यक्रम में फिल्म संगीत कॉटन सिटी चैनल से। इस समय आप सुन रहे हैं, आइए अब सुने राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में सिंग इज किंग फिल्म का ये गीत, जिसकी धुन तैयार की है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का। आइए सुने ये गीत।

आइए अब सुने फिल्म तेरे नाम का ये गीत और अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, गीतकार समीर हैं और संगीत हिमेश रेशमे का है।

आइए अब सुने। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत आप सुने। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है, संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 10 बजे हैं, आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, गीता आपने सुना, फिल्म का नाम था फकीरा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को आपने सुना। गीतकार रविंद्र जैन थे और संगीत रविंद्र जैन का ही था। आइए अब सुने, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खामोशी का ये गीत, और इसकी धुन तैयार की है गुलजार ने और संगीत है हेमंत कुमार का।

आइए सुने किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और आइए आप सुने कर्ज फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत कार जो है आनंद बख्शी हैं।

गीत आपने सुना, फिल्म का नाम कस्मे वादे। इसे आवाज़ दी थी किशोर कुमार और आशा भोसले, अमित कुमार ने। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने कन्यादान फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार नीरज हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
7: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29

0: तक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं जोशीला फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार साहिर हैं और संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है काली घटा और संगीत है आनंद, क्षमा करें, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आइए अब सुने मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी का ये गीत। गीतकार शैलेंद्र हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रसारण जारी रहेगा। मैं हूं आपके साथ श्रीपाल शर्मा। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल

गुरुत्वाकर्षण है, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मुद्दत, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और साथियों की।

आइए सुने मोहम्मद रफ़ी, आसिफ भोसले और साथियों की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है बगावत।

0: हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आइए सुने लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार जतिन ललित। फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, गीत रचना समीर की, संगीतकार नदीम सरवण। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है।

आइए सुने, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आइए सुने, लता मंगेशकर की आवाज़ में देव कोहली का लिखा गीत, संगीतकार राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में। गीत रचना समीर की, संगीतकार जतिन ललित।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने अलका याग्निक कुमार सानू, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतकार राजेश रोशन, फिल्म का नाम है क्या कहना।

इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, दिन के 12 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा अनुरोध गीत। 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गज़लें आप सुन सकते हैं। दिन में 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। 1 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज सुनिएगा जानकारी।

रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का आधार, क्रेडिट कार्ड का कैसे करें सही इस्तेमाल, रसोई की शान, भारतीय मसाले और कुछ सामान्य काम की बातें।

दोपहर समाचार, दिन में 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। 2:30 पर कुछ फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुतो हम आपको बता दें, आज दिन में 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान निधि की 23वीं किस्त के विमोचन पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से ताकेश्वर से सजीव प्रसारण आप सुन सकेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा के फायदे, युवा जीवन में आते उतार चढ़ाव। इसके अलावा एक वार्ता आपको सुनवाई जाएगी, भारत के लोकगीत, नए राजस्थान के वाहक वार्ताकार होंगे मुस्कान सेन। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से संध्या 6 बजे।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:05 हुए हैं। आइए सुने कार्यक्रम अनुरोध गीत।

कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खौरवाल, चाईबासा पश्चिम सिंहभूम झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन कौर और मन्नू, रानी बाजार बीकानेर से रानी जाम्ब और बिट्टू जाम्ब, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए पसंद आप सभी की, गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश यादव, कृष्ण मायल, हनुमान सारंग, किडू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत, रघुनाथपुरा से गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मैक मुणत, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुणत और इनके साथी, भाटापारा दत्रेंगी से हीरामणि वर्मा, पार्शमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, बुडलाना बड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, कोल सिटी वर्का काना से अफजाल ताज, साहिना सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका, मनीष सारण, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और इनके साथी, कुछ पत्र हम तक पहुंचे हैं, लिखने वाले हैं अर्जुन सर, जिला बीकानेर से हरि सिंह सिहाग, विद्या देवी, सुनील, अनिल और सौरभ, शिवपुरी से अरुणा, अरुण जैन और मोनिका जैन, गांव कुवाई सालपुरा बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। आइए सुने आप सभी की पसंद पर यह गीत।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में अभी आपने फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए पसंद आप सभी की, गांव आरायण से बनवारी लाल जयपाल, विमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और इनके साथी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।

चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निपी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी, गांव खोकरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिसानी और निमिता आहूजा, तहसील भादरा अनूपसर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, अशोक कुमार, उपेश कुमार, साहिल राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू कीनू, मदनलाल शर्मा और फूसारा मिल, बीड शहर से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबुल और बीपी कुल थे, नोहर हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सिंह और कालू मिस्त्री, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, गांव घमंडिया से जगदीश डूकिया, प्रमिला डूकिया, ज्योति, शिवम डूकिया, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, शाहिना, विष्णु डूकिया और इवा धारणिया, अलीका डब्बावाली से बसंत सिंह चंद, यशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी, साधुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार, बठिंडा रोड डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, हयात कलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नबीसा परवीन, इसी गीत को सुनने के लिए पत्र हमें लिख के भेजा है गांव पीपासर श्री गंगानगर से कृष्ण गोदारा, हंसराज गोदारा, गौरी शंकर गोदारा और श्रवण गोदारा ने। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

चक 10 SDP लालगढ़, जाटान से रामेश्वर जी निरानिया, सुमन दिव्या, नूतन पंकज, मनीषा, हेमू और ब्रजलाल निरानिया, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, डानी लाल खान जाखोद से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, मुखराम जी, आरिफ खां, ईशान खां, असद खां, अरमान खां और इनके साथी, रातानाड़ा जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी, अलीका डब्बावाली से रूप सिंह लाखोत्रा, करमजीत लाखोरा, सर्वजीत लाखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, निमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके साथी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और इनके साथी, नोहर हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सिंह, कालू सिंह और इनके साथी, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पींगावाला चौक गोरिया जलंधर से, अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। आइए सुने आप सबकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का अनुरोध कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें। आइए सुने इन्हीं की गाई ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने चंदन दास की गाई गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। दिन के 12:50 होने वाले हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाई सुने जानकारी, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और इसके लाभ।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र में किसान भाइयों जका भांत भांत की फसलां लेवे, अरवे जिकी भी फसलां अपने भाई लोग जका नेर क्षेत्र में लेवे, तो वे पानी के आधार पर ही जकी लेवे। पानी अपने सीमित मात्रा में है और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के सागे सागे जे आप सिंचाई जल को आप कुशल उपयोग करके उत्पादन ए सिंचित क्षेत्र भी बढ़ाया जा सके। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जगह के अंतर्गत अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को क्षेत्र आवे, तो जल संपदा को धनी है। किसान भाई और इन क्षेत्र में गंगा नहर है, भाखड़ा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, आशु सिंचाई जकी हो है। पर सिंचाई के जल के कुशल उपयोग के सागे सागे अपनी सरकार है जकी भी जल बचत के अंतर्गत कई कार्यक्रम जका चला रखे है। तो
2: मुख्य भाग हुए, पहलो भाग
1: ड्रिप लाइन और ई पर लागड़ा ड्रिपर हुए। किसान भाइयों, जके शुके के पानी पौधे के आसे पासे टपकतो रहे और जल ने कुएं या डिग्गी शुं पंप द्वारा उठा के पाइपलाइन के माध्यम शुं ड्रिपर तक एक निश्चित दाब पर पहुंचायो जाए, जके शुं जल बूंद बूंद करके पौधे के कन्ने टपकतो रहे और भूमि द्वारा अवशोषित कर लियो जाए। किसान भाइयों, इन विधि शुं पौधे ने जल की पूर्ति लगातार जारी रहे, जके शुं के पौधे की बढ़वार और विकास अच्छो है। इन शुं पैदावार के सागे सागे उत्पादन की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुए। इन विधि में जल को उपयोग अत्यंत मितवे ढंग शुं करो जाए। इन विधि शुं सिंचाई करने पर जल वहन द्वारा रिसाव

यार भूमि स्तर पर वाष्प द्वारा जल हानि जो कि कोनी हो, इन विधि की सिंचाई दक्षता अत्यधिक है। यार आ विधि अपने विशेष तौर शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन विधि में जल के सागे सागे उर्वरक है, जल में घुलनशील आवश्यक रसायन व्यापार सीधा पौधे के जड़ भाग तक पहुंचाया जा सके। ई प्रकार से उर्वरक है रसायन दे गया पा जल के सागे सागे उर्वरक है रसायना को व्यापी का ई प्रकार उर्वरक है रसायन दे गए जल के सागे सागे उर्वरक का रसायना की काफी बचत है जकी करी जा सके। रसायना को सीमित उपयोग करने से संभावित पर्यावरण प्रदूषण ने व्यापा कम कर सका। आ विधि विशेष तौर बागा सब्जियां एर चौड़ी कतार वाली नकदी फसलां जिया के कपास गन्नों आगे लिए बहुत ही उपयोगी है। किसान भाई बात करा पा बूंद बूंद सिंचाई का फायदा की, ई विधि शू जल की बचत हो, ई प्रणाली शू जल की बचत मुख्यतः कम क्षेत्र में सिंचाई करने शू सतह शू कम वाष्पन होने शू सतह शू कम बहाव शू एर जड़ क्षेत्र शू बार कम रिसाव के कारण हुए। आ जल बचत फसल मृदा और वातावरण की परिस्थितियां पर भी निर्भर करे। इन सीमित जल से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई भी करी जा सके। किसान भाइयों बूंद बूंद सिंचाई में सिंचाइयों का अंतराल बहुत ही कम रखे जाए जबकि पौधों संपूर्ण वृद्धि काल में जल तनाव में कदई को नहीं आवे। ड्रिप सिंचाई में जल पूर्ति इसी दर्शु करी जाए कि जबकि मृदा जल की उच्च मैट्रिक एवं प्रसरण क्षमता द्वारा फसल की वाष्पीकरण मांग ने भी संतुष्ट कर सके। किसान भाइयों ड्रिप प्रणाली से सूक्ष्म जलवायु ठंडी रहने के कारण गर्मी की ऋतु में गर्मी से और सर्दी में नमी रहने के कारण पाले गए कुप्रभाव से फसलों ने भी बचाया जा सके। तापमान में कमी और आर्द्रता में बढ़ोतरी से फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। किसान भाइयों इन प्रणाली में फसलों की सिंचाई के सागे सागे उर्वरक है अन्य रसायन जिया के खरपतवार नाशी कीटनाशी फफूंद नाशी अंगी जे जरूरत हो तो आप आवश्यक मात्रा में देश का जगह के अंगो दक्षता पूर्वक उपयोग और जल की बचत दोनों हो जाए। बूंद बूंद सिंचाई में जल पौधा ने आवश्यकता अनुसार पौधे के मूल क्षेत्र के आसपास ही दियो जाए जबकि शु पौधे के बीच में खरपतवार की भी कमी आ जाए। खारे जल वाले क्षेत्र में जठे पारंपरिक सिंचाई विधियां कम कारगर साबित हुई है किसान भाइयों बठे आ बूंद बूंद सिंचाई पद्धति ज्यादा आवर्ती है नमी लगातार बनाए रखने के गुणा के कारण लवणा ने जड़ा शू दूर रखे जबकि शू पौधे के जड़ भाव में लवणा को कम सांद्रण बनाए रखे जबकि शू पौधा की बढ़वार जकी खारे जल शू प्रभावित कोनी हुए और अच्छी पैदावार भी ली जा सके। किसान भाइयों इन प्रणाली में ऊंची नीची भूमि में भी बिना समतलीकरण के आपा पानी है जको लगा सका। रेतीली भूमिया में जठे अंत स्पंदन द्वारा जल को अत्यधिक हास हुए बठे आ प्रणाली जल बचाने में काफी सहायक सिद्ध हुई है। जके क्षेत्र में सिंचाई के बाद भूमि पर पपड़ी जम जाए या अंकुरण में कठिनाई हुए तो बठा सिंचाई की पद्धति बहुत ही उपयुक्त हुई है। इन प्रणाली में डोलियां बनाने की भी जरूरत को नहीं हुए और अतिरिक्त क्षेत्र में बुआई करी जा सके और श्रम की भी बचत हुए। किसान भाइयों अब बात करा पा इंगे रख रखाव की या में कोई ध्यान देने वाली बात है जबकि वे अपने ध्यान में जबकि रखनी चाहिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में। इन प्रणाली में ड्रिपर बंद हो जाए, ड्रिपर का मुख्यतः मिट्टी लवणा या शवाल की वजह से बंद हुआ है अतः बलुई छनक या जालीदार छनक के माध्यम से अपने पानी ले जाना चाहिए। नहरी क्षेत्र में जैविक पदार्थ भी पानी के सागे आ जाए तो दोनों छनक लगाना चाहिए अपने। जे पानी को स्रोत कुआं है तो जालीदार छनक ही पर्याप्त हो। किसान भाई जठे लवणीय जल है तो बठे ड्रिपर लवण जमा हो जाने के कारण बंद हो जाए तो बने तनु हाइड्रोक्लोरिक फास्फोरिक या नाइट्रिक अम्ल से साफ जका करना चाहिए। लेटरल ने कई बार चूहा कुत्ता या जानवर जका भी ने नुकसान पहुंचावे तो इन शू पाने जको बचाव जकी करनी चाहिए। किसान भाइयों इन प्रणाली की शुरुआत में की लागत ज्यादा हुए और इनमें तकनीकी ज्ञान की बहुत ही जरूरत हुए तो इन प्रणाली को नापा तकनीकी ज्ञान ले गए। किसान भाइयों इन तरह से आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है बिंगा आपा लाभ है जका ले इसका जितना भी आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से जो अपना क्षेत्र बढ़ावा या जिकी भी फसल में आपा लाभ लेना चाहवा तो भी फसल में विशेष तौर अपने ज्यादा ही उत्पादन मिलेगा और जितो भी आपा उत्पादन लेवा बिंगी गुणवत्ता भी चौखी होगी। तो इन खातर जितना भी भाई लोग अपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जे अपनावे तो बहुत ही अच्छी बात है और जितनी आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाऊंगा पानी को आपा सीमित मात्रा में होने के कारण अच्छो बूंद बूंद है जो उपयोग करांगा तो लाभ है जो अपने

0: अच्छा मिलेगा। तो इन तरीके से अपने जितों भी आप पानी को बूंद बूंद उपयोग करांगा खेती में, तो भी तो आप खेती से ज़्यादा लाभ है, उत्पादन है वो ले सकेंगा। पर आपने वो भी ध्यान में रखना है कि जितनी भी अपनी फसल है तो बांगो कम से कम पानी वाली जगह फसलें भी आपने बीजनी चाहिए, और इस क्षेत्र भी आपने धीरे धीरे थोड़ा देखो सिंचित बढ़ाना चाहिए। जितनी भी आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनावा तो जितो आप क्षेत्र बढ़ावा तो भी तो अपने बीजा भाव जो ज़्यादा होगो और अपनों उत्पादन जो को ज़्यादा होगो, ऐसा गया आपने लागत है बाजियाँ खाद है या उर्वरक है या जगह अपने रासायनिक छिड़काव करा तो वह बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की में कमी भी आ जाएगी, तो वो भी आपने एक केस का बचत है और पीसो टको जो अपने बच्चे को। तो इन तरीके से अपने जितनी भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धतियाँ से आप फसलां लेवा बस अच्छो लाभ है जो लेना चाहिए। पर हूँ अब खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और इसके लाभ, खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे जानकारी।

यातायात नियमों का पालन करें, आपका जीवन अनमोल है, आपकी आपके परिवार को आवश्यकता है।

पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार होते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उन्हें वृक्ष बनाएं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपथ से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
1: ये हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर

0: अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है जो स्कूल में ला करके 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य BLO के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
2: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आज का महिला जगत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी अलका वर्मा। कुछ प्यारे प्यारे गीत और कुछ बातें लेकर आज का कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम जो है वो आप सबको पसंद आएगा। सखियों, जीवन की राह में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन और परिवार, जबकि जो कुछ रिश्ते हैं वो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि मित्र हुए या कोई सामाजिक संबंध जो है हम बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं। और ये जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं और कठिन समय में हमारा संबल भी जो है वो बनते हैं। कहते हैं ना कि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, प्यार से सींचो तो मजबूत होती है, दौलत पर तो पल भर

साथ छोड़ जाती है, अपनों की छांव ही सदा महफूज होती हैं। आज के जो आधुनिक युग में भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में हम लोग जो हैं वो इतना व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों के लिए समय निकालना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सफलता का वास्तविक आनंद जो है ना, वो तभी मिलता है जब उसे अपने प्रियजनों और अपने परिवार वालों के साथ साझा किया जाए। एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान या सफल क्यों ना हो जाए, यदि उसके जीवन में प्रेम, अपनापन और आत्मीयता नहीं है तो उसका जो जीवन है वो अधूरा ही माना जाता है। मजबूत रिश्ते व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, और जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं वहाँ जीवन जो है वो खुशहाल होता है। सो क्यों, किसी भी रिश्ते की जो नींव है ना, वो हमारे हिसाब से चार स्तंभों पर टिकी होती है। और वो चार स्तंभ क्या हैं? पहला है विश्वास। विश्वास रिश्तों की जो है वो आत्मा होती है। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा जो संबंध है वो मजबूत होता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, माँ बाप से रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जो विश्वास है ना वो हर रिश्ते को मजबूत बनाता है, हर संबंध को जो है वो मजबूती बनाए रखते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सम्मान। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान जब हम करेंगे तभी हमारी जो नींव है वो मजबूत होगी, हमारा प्यार जो है वो बना रहेगा। और तीसरा आता है संवाद। बातचीत बंद होने पर गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। बहुत बार सखियों हमने देखा होगा कि छोटी मोटी बात पे आपस में दो भाई हैं या बहन भाई हैं, जो भी हैं, अगर उनमें कोई झगड़ा हो जाता है तो हम क्या है कि उस बात की गांठ बना लेते हैं और लंबे समय तक हम बात नहीं करते। और बातचीत बंद होने से क्या, गलत फहमियाँ जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और रिश्तों का जो आधार है वो कमज़ोर होने लग जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि बातचीत जब बंद हो जाए, गलत फहमियाँ जब जन्म लेने लगे, तो उससे पहले ही हमें संवाद बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए कि मैं तुमसे इस बात के लिए नाराज़ हुआ था इसीलिए ये बात हुई, और उस गलत फहमी को दूर करके अपना प्यार जो है वापस बनाए रखना चाहिए। और चौथा है त्याग और सहयोग। रिश्ते केवल त्याग और सहयोग लेने से ही नहीं बल्कि देने और निभाने से भी मजबूत होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ से आप ये सोचें कि हाँ मेरा भाई बहन या माँ बाप जो भी रिश्ता है हमारा सामने वाले के साथ, उससे हम उम्मीद करें कि वो ही हमारे लिए हमेशा त्याग करे, वो ही हमारे लिए सहयोग करे। नहीं, हमें भी वो सेम चीज़ें उनके साथ करनी चाहिए, तभी जो है वो रिश्ता मजबूत बनेगा। परिवार के साथ हर रोज़ सखियों कुछ समय बिताएं, अपनों की बात ध्यान से सुने, छोटी छोटी खुशियां मिलकर बांटें, गलती होने पर क्षमा मांगने में संकोच न करें, धन्यवाद और प्रशंसा जैसे शब्दों का प्रयोग करें, अहंकार रिश्तों के बीच में ना आने दें। यही है रिश्तों को मजबूत बनाने के कुछ सरल उपाय, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की नहीं छोटी छोटी भावनाओं की ज़रूरत होती है। चलते चलते आपको चंद पंक्तियाँ सुना दूँ कि जीवन की राहों में जब अंधेरा छा जाता है अपनों का साथ ही दीपक बन जाता है। जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है तब अपनों का साथ ही दीपक बन जाता है। जो रिश्तों को दिल से संभाल कर रखते हैं उनका हर सपना सच हो जाता है। तो आइए आज संकल्प लें कि हम अपने रिश्तों को समय देंगे, प्रेम देंगे और विश्वास की नींव को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि वास्तव में रिश्तों की मजबूती ही सफल जीवन का आधार है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: लगता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो क्यों हम बात करेंगे आज एक ऐसे वित्तीय साधन की जो हमारी सुविधा तो बढ़ाता है लेकिन यदि इसका सही उपयोग ना किया जाए ना तो ये आर्थिक परेशानी का कारण भी जो है वो बन सकता है। जी हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारी दैनिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खरीदारी हो या कहीं ट्रैवलिंग करना हो या ऑनलाइन भुगतान करना हो, क्रेडिट कार्ड हर जगह उपयोग में आता ही आता है। लेकिन सुविधा के साथ साथ जिम्मेदारी भी जो है वो जुड़ी होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसका समझदारी से उपयोग करें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड कोई अतिरिक्त आय नहीं है, ये बैंक द्वारा दी गई एक निश्चित सीमा तक की उधार राशि होती है जिसे निर्धारित समय पर चुकाना होता है। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाए तो ब्याज और जुर्माना दोनों ही लग सकते हैं, इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के सखियों बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से है कि नकदी के साथ रखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। दूसरा कि ऑनलाइन खरीदारी सुरक्षित और सुविधाजनक बनती है। आपातकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता मिलती है। कई कार्डों पर कैशबैक, रिवाइंड पॉइंट और छूट भी जो है वो मिलती है। समय पर भुगतान करने से अच्छा क्रेडिट स्कोर भी जो है वो बनता है, लेकिन इन फायदों का लाभ तभी मिलता है जब इनका उपयोग जो है वो जिम्मेदारी से किया जाए। सके क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करने के कुछ नियम हैं, जैसे कि ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करें। क्रेडिट कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता से अधिक खरीदारी की जाए, हमेशा अपनी आय और बजट दोनों को ध्यान में रखकर ही खर्च करने चाहिए। और भी कई नियम हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संबंध से। आवाज़ मुकेश की है, संगीत ओपी नैयर का है और गीत लिखा है प्रदीप कुमार।

हाँ तो सखियों, हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने के भी कुछ नियम हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला तो नियम यही होता है कि ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करें। दूसरा ये है कि बिल का पूरा भुगतान जो है समय पर करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल न्यूनतम राशि जमा कर देते हैं, इससे शेष राशि पर भी ब्याज जो है वो लग सकता है। इसीलिए हर महीने जो है वो अपना पूरा बिल जो है चुकाने की आप आदत डालें। तीसरा है कि कार्ड की सीमा का पूरा उपयोग ना करें। क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30 से 40% तक ही उपयोग करना बेहतर होता है, इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो भी अच्छा बना रहता है। और चौथा नियम है सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अपना जो कार्ड है उसका नंबर, सीसीटीवी, ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें, या जहाँ पे भी कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे भी आप ध्यान से इन पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। किसी पर भी भरोसा ना करें, किसी भी कॉल पर या किसी भी लिंक पर भरोसा जो है वो ना करें। इसके अलावा खर्चों का रिकॉर्ड रखें, भुगतान की अंतिम तिथि याद रखें, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स सक्रिय रखें अपने फ़ोन में, और हर महीने स्टेटमेंट की जांच जो है करते रहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अनावश्यक खरीदारी ना करें, ओटीपी किसी को ना बताएं, कई कार्ड लेकर अत्यधिक खर्च ना करें, भुगतान में देरी ना करें। क्रेडिट कार्ड एक उपयोगी वित्तीय उपकरण है, ये जो है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ इसका उपयोग करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुविधा का साधन है, समझदारी से अपनाइए। सुविधा का साधन है ये, समझदारी से अपनाइए। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कर भविष्य सजाइए, बजट और

भुगतान का यदि ध्यान रखेंगे आप, आर्थिक सफलता की राह पर बढ़ते जाएंगे आप, और उम्मीद करते हैं कि आप सफलता की राह पर आगे से आगे बढ़ते जाएं। और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम महिला जगत, और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मर्यादा से, आवाज़ मुकेश की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

सो क्यों, इस समय आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और आज इसमें साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी अलका वर्मा। और वक्त हो चला है रसोई घर की तरफ रुख करने का। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मसालों के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत को मसालों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा प्रकार और मात्रा में मसाले जो हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यहाँ के मसाले खाने में जो स्वाद डालते हैं उसे खाकर भारतीय खाने का हर कोई दीवाना हो जाता है। मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होने वाले मसाले खाने को स्वाद और रंगत देने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। पौधों की जड़ों, छाल, फल, बीज और पत्तियों से मसाले प्राप्त किए जाते हैं। आमतौर पर हम मसालों और जड़ी बूटियों में अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों को कई बीमारियों के इलाज और खाने की गार्निशिंग में प्रयोग किया जाता है। मसालों में प्राकृतिक रूप से स्वाद और खुशबू जो है वो निहित होता है।

होती है। खाने में इनका इस्तेमाल नियमित मात्रा में किया जाता है, जिससे कि उसमें अतिरिक्त कैलोरी जो है नहीं जुड़ती हैं। साथ ही साथ मसालों में कई प्रकार के पोषक तत्व भी जो होते हैं। भारतीय मसालों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हम इस पर चर्चा आगे तक जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सफ़र फिल्म से। आवाज़ मुकेश की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और इस गीत को लिखा है इंदीवर ने।

होते हैं। दालचीनी, सौंफ, मेथी, इलायची और काली मिर्च जैसे मसालों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो मेटाबॉलिक दर को बढ़ा देते हैं। ये मसाले जो हैं वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से जो है बाहर निकालते हैं। अदरक, इलायची, जीरा, सौंफ और लौंग जैसे मसाले गैस और पेट की सूजन को दूर करने में सहायक हैं। इसी तरह हल्दी, दालचीनी, जायफल, सौंफ, अदरक भी त्वचा की रंगत को संवारने में काफ़ी कारगर हैं। और लंबे समय तक मसाले जो हैं वो हमारे खाने को संक्रमण रहित और सुरक्षित बनाए भी रखते हैं। मसालों का ज़्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। कई मसालों की तासीर जो है वो गर्म होती है और ये त्वचा के संपर्क में आने पर लालिमा, जलन और खुजली जैसी स्थिति को भी उत्पन्न कर सकते हैं। दालचीनी और जायफल अन्य मसालों की तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं। ज़्यादा मसालेदार खाने से मतली, पेट खराब और दस्त जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं। सकियों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन का है, गीत लिखा है नीरज ने और फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

क्यों हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में भारतीय मसालों के बारे में, तो इसके जो हैं बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जैसे कि मसालों में कुदरती तौर से चिकित्सीय गुण मौजूद होते हैं। लौंग, धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, काली मिर्च, हल्दी जैसे मसालों के पोषक तत्व सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, गठिया जैसे पुराने रोगों को ख़त्म करने में भी मसालों का प्रयोग लाभदायक माना जाता है। इसी तरह से कुछ मसालों में शुगर को कंट्रोल करने के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि मेथी के बीज, अदरक, ये सब चीज़ें जो हैं वो डायबिटीज़ के इलाज में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। दोनों मसालों को ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के गुण भी मौजूद

तो क्यों अब बात करते हैं कुछ ऐसे मसालों की जो हमारे रसोई घर में मौजूद होते हैं और उनके गुणों की भी। तो बात करें अजवाइन की, तो अजवाइन जो है वो पेट में मरोड़ ठीक करती है, आफड़ा ठीक करती है और पेट के कीड़े नष्ट करती हैं। माँ का दूध बढ़ाती है और सर्दी जुकाम में आराम देती हैं। हल्दी जो है खून को साफ और पतला करती है, कफ को मिटाती है। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द, चोट, घाव, खून की कमी आदि में हल्दी जो है वो लाभदायक होती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से टूटी हुई हड्डी तेजी से जुड़ती है और अंदरूनी चोट भी ठीक होती है। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाकर भी जो है बहुत सारी जगहों पर खाई जाती है, खास करके राजस्थान में। बात करें जीरा की, तो ये खाना पचाने में सहायक होता है, गैस बनने से रोकता है। छाछ में भुना हुआ जीरा डालकर पीने से भी फायदा होता है। राई से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, गैस नहीं बनती, पाचन में सहायक होती है। छाछ में राई का छोंक लगाकर पीने से भी फायदा होता है। इसी तरह से धनिया की तासीर ठंडी होती है, एसिडिटी, पेट की गर्मी, शरीर की जलन को दूर करने में ये लाभकारी होता है। लौंग के एंटीसेप्टिक गुण सड़न को रोकते हैं और संक्रमण को दूर रखते हैं। ये पाचन शक्ति बढ़ाते हैं और मुंह की बदबू को दूर करते हैं। पानी में लौंग उबाल कर पीने से बुखार के बाद की पाचन संबंधी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती हैं। काली मिर्च जो है वो सर्दी जुकाम खांसी से बचाव करती है। मलेरिया और वायरल बुखार में इसका सेवन से आराम मिलता है। इसके सेवन से खांसी में भी काफ़ी आराम आता है। हींग जो है पेट की गैस मिटाती है। गुड़ के साथ खाने से पेट के कीड़े जो हैं वो नष्ट होते हैं और पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द और आफरे की समस्या दूर होती हैं। अचार को बर्तन में डालने से पहले हींग का धुआं भरने से अचार जो है वो कभी भी खराब नहीं होते। कहने का मतलब ये है सखियों कि हमारे जो मसाले हैं वो भी ज़्यादातर औषधीय गुणों से भरपूर हैं। और इस जानकारी के साथ आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म उपासना से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, गीत लिखा है इंदीवर ने और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
7: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: तो क्यों गर्मी आते ही हम सबकी एक कॉमन समस्या है स्किन के डीटेन होने की। डीटेन का मतलब है कि हम सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं और हमारी स्किन उसके नुकसान के प्रति कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन की समय से पहले उम्र बढ़ने की समस्या, पिगमेंटेशन, काले धब्बे या झुर्रियों की समस्याएँ जो है वो हो सकती हैं। इसलिए हमने अपनी स्किन को टैन होने से बचाना चाहिए। रोज़ाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलने के 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन जो है वो ज़रूर लगाएं। अपनी त्वचा को ढक कर रखें, यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, चेहरे को ढक कर रखें, धूप का चश्मा पहनें, चेहरे को कम से कम 2 से 3 बार साफ करें, खूब सारा पानी पिएं और चेहरे को फेस मास्क से हाइड्रेट रखें। बात करें कुछ घरेलू उपायों की, तो टैन वाली जगह पर नींबू का रस और शहद मिलाकर लगाएं, 10-15 मिनट तक छोड़ दें और फिर उसे धो लें। इसी तरह हल्दी और दही को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। आलू का रस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है टैनिंग को दूर करने में। इसके अलावा एलोवेरा जेल, कच्चा दूध या फिर बेसन और हल्दी को मिक्स करके भी टैनिंग की जगह जो है आप लगा सकते हैं। नारियल पानी पिएं, क्योंकि ये त्वचा को हाइड्रेट रखता है, टैनिंग से बचाव में मदद करता है। यदि आपको त्वचा में जलन या सूजन हो रही है तो किसी त्वचा के विशेषज्ञ से सलाह जो है वो आप ज़रूर रखिए। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम महिला जगत। और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म उपकार से, आवाज़ मुकेश की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और गीत लिखा है कमर जलालाबादी ने।

सखियों, चलते चलते आपको बता देते हैं कुछ ऐसे फलों के बारे में जो वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूध के साथ केला खाने से वजन तेजी से बढ़ता है क्योंकि दूध में प्रोटीन और केले में शुगर और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। किशमिश, काजू, नट्स और बादाम में सैचुरेटेड फैट और हाई कैलोरीज होने के कारण भी ये वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। अंजीर में हाई कैलोरी होने के कारण भी ये वजन बढ़ाता है और अंगूर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे खाने से भी आसानी से वजन जो है वो बढ़ सकता है। और इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। फिल्म का नाम है आनंद, आवाज़ मुकेश की, संगीत सलील चौधरी का है और गीत लिखा है योगेश ने।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सखी, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी अलका वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: countries in the fields of digital governance, e-government, public administration, capacity building, and citizen-centric service delivery. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rafah area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. Hezbollah leader Naim Qasim said the group would respond with force if attacked, adding that efforts to eliminate Hezbollah had failed and Israel would eventually withdraw from Lebanese territory. In cricket, Afghanistan were 29 for 3 in 8 overs against India in the third and final ODI at the M. H. Chidambaram Stadium in Chennai when reports last came in. Earlier, visitors won the toss and elected to bat first. Hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunhac starred for the five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास

0: योजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी, खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा

0: दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर

0: जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

नीलकमल। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। शाहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत दिया था रवि ने। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि। फिल्म का नाम है खानदान।

आइए सुने लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

प्रेम जाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, साधना सरगम और साथियों की आवाज में। आइए सुने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है पिया का घर।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने महेंद्र कपूर की आवाज़ में क्रांति फिल्म का ये गीत, गीत रचना संतोष आनंद की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण उर्दू सर्विस आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज लोकगीत। शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुनेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन सकते हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुदम्बार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तहान से कबल मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने हैती को 0-3 से हराकर पहली जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभामपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया मुर्मू के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संथाली जहरा गोशानी पीठ और हो जहरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखे जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम अवामी प्रोग्राम में शिरकत की जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनअती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह की फिक्स्ड डोज मुरक्कबात FDC अद्वियात की इंसान इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उंसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA NEET UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। ये सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तहानी मराकज में इस मॉकड्रिल का अहतमाम किया गया। इम्तहानात को साफ, शफाफ और

0: करते हुए उन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक करार दिया। एक अमरीकी न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सर ट्रंप ने कहा कि मोदी ने भारत को एक ऐसे दौर के बाद इस्तेहकाम फराहम किया है जब मुल्क में बाक़यादत बार बार तब्दील होती रही। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी गुज़श्ता 12 साल से ज़्यादा अरसे से इक़्तदार में हैं। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ब्राज़ील ने आज फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इफ्तिताही मैच में मराकश से ड्रॉ होने के बाद ब्राज़ील पर इस मैच में जीत हासिल करने का काफ़ी दबाव था। इस जीत के साथ ही ब्राज़ील की टीम गोल के फर्क की बुनियाद पर अपने ग्रुप में सरफहरिस्त है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सरकार ने 16 फेज डोज कम्बिनेशन अद्वियात की तैयारी फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनक़िद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तहान से कबल मुल्क के मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने हैती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

अभी आप समाप्त कर रहे थे अरमान फिल्म का नगमा। आवाजें थी शंकर महादेवन और अलका याग्निक की। अब आइए सुनते हैं तेरे मेरे प्यार फिल्म का नगमा। आवाज है श्रेया घोषाल की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में लीजिए अब सुनिए ब्रज लोकगीत।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त के विमोचन पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ताकेश्वर से सजीव प्रसारण अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर the state of Bengal, a great day for the farmer brothers and sisters of the country, a Bikasit Bengal, a Bikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India. The resolve to make the country a Vikasit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
2: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री

0: किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going

0: abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ख़ास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल की विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: एब्सोल्युटली।

0: each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज इमेजिन अ फार्मर सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ अ विलेज समवेयर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट ही नोज एंड ही ट्रस्ट्स द गवर्नमेंट एंड देन he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे भीड़
0: मंच
1: में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: मैं
0: रहा है
1: उनका
0: और
1: हार्दिक
0: वो
1: स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने
0: ये
1: के
0: लोगों की
1: अलावा आज
0: आवाज़ें,
1: माननीय
0: उनको अभिवादन
1: प्रधानमंत्री
0: करते
1: श्री
0: हुए,
1: नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और माननीय
1: परियोजनाओं का
0: प्रधानमंत्री महोदय ने
1: शुभारंभ
0: अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण कर
1: तथा
0: लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
2: The Honourable Prime Minister
1: Honourable
2: on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri R. N. Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय. और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी.
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम. भारत केसरी, लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स।

0: that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat for developed India by 2047.
1: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji. यहाँ के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहले

के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया।

इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को

बनाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है।

हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री

टैग के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे

0: हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किश्त के विमोचन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले ताकेश्वर से सजीव प्रसारण। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवाओं के विचार, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा और उनकी रचनात्मक ही देश के वर्तमान और भविष्य का निर्माण करती है। युवावस्था सपनों, संघर्षों, अवसरों और चुनौतियों का वह दौर है जहां लिए गए निर्णय पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: दोस्तों, आज का युग डिजिटल युग है। हर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों का उपयोग हम करते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल भुगतान हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं खतरे भी बढ़े हैं। आज साइबर अपराध दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है।

साइबर अपराधी नई नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराते हैं और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान अलग रूपों में हो सकते हैं, जैसे फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और फर्जी निवेश योजनाएं। और इसके अलावा कई बार लोगों को बैंक अधिकारी बनकर फोन किया जाता है और उनसे ओटीपी मांगा जाता है। कुछ लोग लालच में आकर अपनी जानकारी साझा कर देते हैं, उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी सावधानी आवश्यक है। कई लोग अपनी निजी जानकारी, यात्रा की जानकारी और बैंकिंग संबंधी सूचनाएं सार्वजनिक कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग हो जाता है। तो हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे मजबूत पासवर्ड लगाने चाहिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग करना चाहिए, संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, मोबाइल ऐप केवल विश्वसनीय स्रोतों से डाउनलोड करना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया पर अजनबियों से सावधान रहने में ही सतर्कता है। और हां, सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, भारत में तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में साइबर जागरूकता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है। यदि कोई साइबर अपराध हो जाए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मैं नंबर एक बार दोबारा बता देता हूं, 1930 पर शिकायत जो है वो दर्ज करवानी चाहिए। कहा जा सकता है कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि जागरूक नागरिक बनने की पहली शर्त है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दोस्तों, सुनवाते हैं एक वार्ता, भारत के लोकगीत, नए राजस्थान के वाहक। वार्ताकार हैं मुस्कान सेन।
6: श्रोताओं नमस्कार, मैं अपने विषय की शुरुआत इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ करने जा रही हूँ। सुरों में बसी है मिट्टी की महक, सुरों में बसी है मिट्टी की महक, हर धुन में छिपा है अपनापन नेक। भारत, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी एक अलग पहचान लिए खड़ा है। कहीं पंजाब के भांगड़े की धूम है, तो कहीं गुजरात के गरबे की रंगत है। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जिसे सुनते ही आपके मन में रेगिस्तान की हवाएं, मरुस्थल की विशालता, ऊंटों की चाल और रंग बिरंगे घाघरा ओढ़ने की छवि उभर आई हो? अगर हाँ, तो वह है राजस्थान कला की आत्मा, हमारे लोकगीत। अगर बात लोकगीत में भाव, गहराई और आत्मा की हो, तो राजस्थान का नाम सबसे अलग चमकता है। राजस्थान के लोक गीतों में वो सच्चाई है जो दिल को छू जाती है, और वो गहराई है जो सीधे आत्मा में उतर जाती है। कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ राजस्थान के नाम। रेत की खुशबू हवाओं में सुरों का जादू, रेत की खुशबू हवाओं में सुरों का जादू, राजस्थान की धरती गाए दिल से हर एक रागू। राजस्थान में स्वागत दिलों से किया जाता है, मेहमान को मेहमान नहीं भगवान माना जाता है। अगर राजस्थान की रेत बोल पाती, तो वह लोकगीत ही गाती, और अगर हवाएं गुनगुना सकती, तो वह केसरिया बालम पधारो मारे देश की धुन सुनाती। राजस्थान के लोक गीतों में जीवन के हर रंग देखने को मिलते हैं। कहीं प्रेम की मिठास

0: सह कहीं विरह की कसक तो कहीं वीरता की गूंज। राजस्थान में हर अवसर का अपना एक गीत होता है। शादी हो तो बन्ना बन्नी की हंसी गूंजे, तो कभी तीज त्योहार पर झूमे हर आंगन, कभी विरह की घड़ी हो तो दिल को छू जाने वाले दर्द भरे सुर। यही तो खासियत है इन लोकगीतों की, ये जीवन के हर पल के साथी बन जाते हैं। गीतों में बसा है यहाँ के जीवन का हर रंग, सुरों में छिपा है एक प्यारा सा बंधन। ढोल की थाप, सारंगी की तान और खंजरी की झंकार, ये सब मिलकर ऐसा समा बांधते हैं कि हर कोई खुद को रोक नहीं पाता। लोकगीत राजस्थान के इतिहास और वीरता के भी वाहक हैं। यहाँ के गीतों में वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं की गाथाएं गाई जाती है। राजस्थान की धरती केवल वीर पुरुष की ही नहीं है, बल्कि ऐसी वीरांगनाओं की भी भूमि है जिन्होंने साहस, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत मिसालें स्थापित की है। जब जब मातृभूमि और सम्मान पर संकट आया है, तब तब राजस्थान की इन नारियों ने तलवार उठा इतिहास रचा है। जब इतिहास के पन्ने वीरता की स्याही से लिखे जाते हैं, तब राजस्थान की वीरांगनाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में चमकता है। अगर वीरता का पता पूछा जाए तो उसका नाम है राजस्थान, और अगर त्याग, बलिदान, साहस, स्वाभिमान की मिसाल पूछी जाए तो उसका जवाब होगा राजस्थान की वीरांगनाएं। ये वो नारियां थी जिनके हौसले पर्वतों से भी ऊंचे थे, जिन्होंने इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की धरती पर वीर पैदा हुए, लेकिन इतिहास तब अमर हुआ जब पन्नाध्याय ने पुत्र खोकर राज्य बचाया, हाड़ी रानी ने शीश देकर कर्तव्य निभाया और पद्मिनी ने जोहर कर स्वाभिमान की लौ जलाए रखी। इन वीरांगनाओं की तलवारें भले ही आज शांत हो, लेकिन इनकी गाथाएं आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गूंजती हैं, और यह गाथाएं आज के युवा पीढ़ी के हृदय में साहस की ज्वाला जलाती है। यदि राजस्थान की संस्कृति एक विशाल महल है, तो उसके लोकगीत वहां की वो खिड़कियां हैं जिससे हमें वीरता, प्रेम, त्याग, स्वाभिमान की झलक देखने को मिलती है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सैकड़ों सालों पहले न तो मोबाइल था, न इंटरनेट, न यूट्यूब, फिर राजस्थान का इतिहास हजारों सालों तक कैसे जीवित रहा, आखिर कैसे? साथियों, ये लोकगीत अपने आप नहीं बचे हैं, इन्हें जिंदा रखा है उन लोगों ने जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें गाने में बिता दी। वो लोग हैं हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारे गांव के वो बुजुर्ग लोग जो शायद बड़े मंचों पर कभी नहीं गए, लेकिन उनके सुरों में वो सच्चाई है जो सीधे दिल को छू जाती है। उन्हें न किसी अवार्ड की चाह थी, न किसी पहचान की, फिर भी उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोकगीतों को संभाल कर रखा। राजस्थान के बुजुर्गों की यादें और लोकगीत एक दूसरे के पूरक है, एक को सुनो तो दूसरा अपने आप सामने आ जाता है। आज की युवा पीढ़ी रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हमारे दादा दादी लोकगीतों के माध्यम से अपने जीवन के गहरे अनुभवों को सुनते और सुनाते थे। सच कहूँ तो ये लोकगीत सिर्फ लोकगीत नहीं है, ये हमारी संस्कृति के सच्चे वाहक। सच कहूँ तो ये लोग सिर्फ गायक नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति के सच्चे रक्षक हैं। और सबसे अद्भुत बात, न किताबों में न कागजों पर, न किताबों में न कागजों पर, ये गीत दिलों में बसते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हमारी पहचान को रचते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जहाँ हम नए नए गानों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हर दिन नया ट्रेंड, नई बीट और नया स्टाइल सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी ये गाने 15-30 सेकंड के वायरल क्लिप्स बनकर रह गए हैं, लेकिन राजस्थान के लोकगीत पूरी पीढ़ी की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि संस्कृति की ये मीठी धुन कभी न खोए, कि संस्कृति की ये मीठी धुन कभी न खोए, हम सब मिलकर इसे आने वाले कल तक पहुंचाएं। धन्यवाद।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा

0: टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर, 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है। समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में भी बदलाव आता जा रहा है। आज डिजिटल तकनीक ने शिक्षा की दुनिया में एक नई क्रांति सी ला दी है। कुछ वर्ष पहले तक शिक्षा केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों तक ही सीमित थी, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया का ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल शिक्षा की। मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लासेस, ई पुस्तकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, ये सब है डिजिटल शिक्षा। इसके बहुत से लाभ भी हैं, जैसे विद्यार्थी घर बैठे आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, देश और दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों के व्याख्यान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यात्रा, पुस्तक और अन्य खर्चों में कमी आती है, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं और डिजिटल उपकरणों के उपयोग से तकनीकी कौशल विकसित तो होती ही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी के लिए मिल जाती है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इंटरनेट की उपलब्धता ना होना, डिजिटल विभाजन, स्क्रीन टाइमिंग, ध्यान भटकना। इन चुनौतियों के बावजूद डिजिटल शिक्षा भविष्य का मार्ग है। नई शिक्षा नीति भी तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। आज आवश्यकता है कि हम तकनीक का सकारात्मक उपयोग करते हुए ज्ञान को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएं।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराई की, 6:30 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे 6:40 पर, 6:45 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में। शाम 7:00 कार्यक्रम रहेगा चौपाल का, 7:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, जिसके अंतर्गत आप भक्ति संगीत सुन पाएंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम रहेगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, 8:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 पर, न्यूज़ एट 9 रात्रि 9:00।

9:15 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत, 9:30 पर आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती हमारे दिल्ली केंद्र से, रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सिराई की।

0: ए ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। असा आप सब दा हार्दिक स्वागत करेंदे हैं, सलाम नमस्ते पेश करेंदे हैं। अज दे दो खास प्रोग्राम हैं, प्रकृति दे सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत बारे एक वार्ता बहन सुदेश सैगल जी दे नाल, ते दूजा साडे नाल हैं काव्य पाठ वास्ते साईं सुरेंद्र सिंह चांदना जी। सब तो पहले आप दे सामने हाजिर है एक वार्ता बहन सुदेश सैगल जी दे नाल, प्रकृति दे सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी।
1: सुदेश सहगल दी तरफो राम राम ते आदाब। अज मैं तुहानू हिंदुस्तान दे एक इंझे लिखाड़ी बारे दसण कीते हाजिर हाँ जिन्हां दे बगैर हिंदी साहित्यिक इतिहास दी कल्पना करना बहु औखा है। छायावादी लिखत दे सब तो अनोखड़े लिखाड़ी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद दा चौथा खंबा मन्या वेंदे। हिंदे विच कोई शक है नहीं कि छायावादी कविता को नवा पंध दिखालन विच हिन्ने दा बहु वड्डा योगदान है। पंत जी दी लिखत दी सब तो वड्डी खासियत ए है कि लिखत दा असल मुद्दा अलहदा थीवन दे बावजूद भी हुंदे विच ख्याल दी उच्ची उडार कुदरत दे पासे मिकना तीसी कुदरत दे इंसानी जिंदगी दे पोले पंख दे पासे एक जुनून है एक दीवानगी है। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 विच उत्तराखंड दे अल्मोड़ा जिले दे कोसानी पिंड विच थिया है। हिने दे पिता जी का नाँ पंडित गंगा दत्त पंत ते माँ का नाँ सरस्वती देवी है। 8 भेणी विरावे विच सबों किन्ने छोटे पंत जी का छोटे ला नाँ गुसाई दत्त रख्या गया है जेड़ा हिने को पसंद नहीं आया। एक भी बदकिस्मती भी हिने नाल जुड़ी है कि हिने दे जम्मण दे 6 घंटे बाद ही माता जी दुनिया तो रुखसत थी गई चलाना कर गई। पंत जी को हुने दी डाडी ने पालिया पोसिया। पंत जी जेड़े पिंड कोसानी विच जम्मे हन ओ पिंड कुदरत दी गोदी विच वस्या विया है। शायद यो कारण है कि पंत जी दी हर लिखत विच तुसा किथई ना किथई प्रकृति दे कुदरत दे दर्शन कर सकते हो। तो शायद ही वजह नाल हुने को प्रकृति दा पुत्र भी आख्या वेंदे। प्रकृति नाल एक गाल हुने दी हर लिखत विच साबित थींदी है कि हुने को सब शय भावें ओह कुदरत दे नज़ारे होवन झरने होवन चहचहांदे पक्षी होवन बहु प्यार है। पंत जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोसानी विच करके फिर अल्मोड़ा विच पूरी कीती वल अगों दी पढ़ाई पूरी करन कीते बनारस चले गए। पढ़ाई वेले ही महात्मा गांधी जी दे असहयोग अंदोलन विच शामिल थीवन करके हिने को जेल थी गई। पढ़ाई विचों ही छुट गई पर पंत जी हिम्मत ना हारे आपो आप पढ़दे रह गए। नतीजतन घर बैठे बिठाए खुद पढ़ के ही इन्होंने संस्कृत बांग्ला हिंदी ते अंग्रेजी विच महारत हासिल कीती। लिखण दा शौक ते इन्हां को छोटे ला तो ही है। ओ शौक वधदे वधदे वड्डे थींदे तोणी परवान चढ़ गया। हिक दे बाद हिक काव्य रचना लिखी। पंत जी ने तकरीबन 28 रचना लिखन जिंदे विच्चो हुन्ने दी काव्य रचना चिदंबरा को 1968 विच ज्ञानपीठ पुरस्कार नाल नवाजा गया। कला और बूढ़ा चांद रचना को 1960 विच साहित्य अकादमी पुरस्कार ते हुन्ना दे महाकाव्य लोकायतन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिता गया। हिंदे तो अलावा पंत जी को 1961 विच पद्म भूषण नाल भी सम्मानित किया गया है। पंत जी दी बहु बहु लिखता हैं जो बहु ही मशहूर हैं। उन्होंने

0: अभी आप कार्यक्रम सिराय के सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
3: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
1: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित

0: एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
1: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी जो अपेक्षा

0: न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित जेईसीसी में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई एसआईआर प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में बीएलओ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर बीएलओ और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनज़र टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि पीएम ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों,

0: शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही SMS स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलूम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवरलाल जनागल को नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को

0: बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिला जुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। 12 जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भिया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजूली जावेला। देश भर में आज पुख्ता इंतजाम त्री परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौरों 18,880 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जिया कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत रकम जारी करण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी चियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी जी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावा माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रुपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल फिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माई लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि राज्य सरकार गांवाई हलका माए विकास सारू लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा जनताओं

0: ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरां रो बत्तों बत्तों फायदो लेवन री अरज कीनी।
1: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: मुख्यमंत्री नैरी नैरी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावां रो फायदो लेवन वाला सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माय नौ सेना सारू देश माय बनाई जा तीन जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय ने पानी माय उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बियां रे खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माय काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब ए जंगी जहाज बनावन रा काम माय 232 एमएसएमई इकाई योगदान दिनो। केंद्र सरकार 16 भांतरी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाइयां बनावन और बेचण माथे तुरंत रोक लगाती नी है। सुप्रीम कोर्ट रा हुक्म पाछे जानकारां री समिति कान्यू करी जी सिफारिशों ओ फैसलो करी चियो। समिति रे मुजब आ दवाइयां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वेवन री शंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यां रा औषधि नियामकां और संबंधित एजेंसियां ने करडायूं रोक लगावन रा हुक्म दीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि भारत री साफ गोई सागर निपक्ष चुनाव प्रक्रिया माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। वे आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहो कि देश रा भरोसेमंद चुनाव प्रबंधन ने दुनियाई मान्यो है।
2: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान मतगणना इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजू हैला। इन ठीक तरीकों और साफ कोई सागा करावन सारू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज तैयारियां री परख कीनी। इनमाय 2.5 लाख बत्ता सुरक्षा कर्मचारी शामिल फिया। एनटीए रे मुजब नीट यूजी री परीक्षा देश रा 551 शहरा और प्रदेश माय 14 ठौड़ा ओजू ली जावेला, जिनमाय 22,79,000 बत्ता विद्यार्थी शामिल फैला। परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे 22 जून ताई रोक रहवेला। ओजू ली जा रही नीट यूजी परीक्षा सारू प्रदेश माय 25 जिला माय 577 सेंटर बनाई चिया है। राज्य माय करीब 2,09,000 उम्मीदवार आ परीक्षा देवेला। परीक्षा साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह सावचेत है और सीआरपीएफ री ओरों हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। प्रदेश माय साफ सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन सारू पहली दफा बिजली चालन वाली बसा चलाई जावेला। प्रधानमंत्री ई बस सेवा रा तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर 47 ई बसा ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। अमर जवान ज्योति माथे राखी जिया ई कार्यक्रम माय 29 बसा राजधानी जयपुर और 18 बसा भीलवाड़ा ने दीरी जी। ई मौके मुख्यमंत्री कहो के ई बसाओं हवा माय गंदगी कम घुड़ेला। श्री शर्मा ई बस माय अमर जवान ज्योति स्टेट हैंगर ताई सफरी कीनो। ध्यानयोग है कि पीएम ई बस योजना रा तहत प्रदेश

चौपाल सुनिए सगले श्रोतावाने, सुनील भाई की ओर शू मोकली मोकली राम राम। भाइयो बात करा संस्कार की, तो आपने जीवन में संस्कार को बहुत महत्व है। आपने कहना चाहे कि तो समान है, कि तो धन दौलत है, मेल मालिया है, पर जे आपने कने संस्कार न उसी तो आपनी कोई कीमत कोनी, कोई कदर कोनी। आपने अर पशु में कोई फर्क कोनी जे आपने कने संस्कार रूपी गिणा न उसी। भाईडो आपने एक के बताए कि बोलियो अर पिछाणियो, यानी आदमी गिज की बोली है वह बोलते भी उठा पड़ दिए कह जको मिनख है, उकी तो संस्कारी है, इंगा संस्कार किया है, लियाकत किया है। जकी इंगी लियाकत है बाबिंगो उजास किए चारों मेर चारों कुंटा में फैला दिए, वह वो भी मिनख है भाई लोग, पर बिंग कोई सींग को नहीं है, पर वो जको आपकी बोली है, आपका जका सदगुण है नहीं बाशू, आपका जका व्यवहार है बाशू, न्यारो ही ओढ़खी जाए। आपने एक कहावत है कि जो घी है वो अंधेरे में छानो कौन रहे, तो बीतरिया ही जो सदगुणी आदमी है, सदव्यवहारी आदमी है, संस्कारी आदमी है, वो खटी छानो कौन रहे, वो आपके व्यवहार छू, आपकी बातें छू, सारी जगह पहचानिया जावे। भाईड़ो बात करा आपने टाबरांगी, तो टाबरिया तो की है राम जी का रूप हुए एर कुमार आली माटी हुए, बिन आपा किया ही मन चाहियो रूप देश का एर किया ही डाल सका। टाबर की है मायता कनु सिख है एर मायत एर परिवार टाबरांगी पहली पाठशाला हुए, वो जिया मान लियो देख है भी यही सिख है, आज का अपना टाबर है संस्कार आशू की है दूर होन लाग रहा है, संस्कारहीन होन लाग रहा है, ना बंग पर मन गमा कोई कान कायदो है, ना बे कोई बडेरा की मन है, आपकी मर्जी का मालिक है, जिया मन करे भी यही करे। पहला जका श्रोताओं मायता नहीं जका या जका परिवार हा या परिवार का जका दूसरा लोग हा, बे जिया दादो दादी है, माऊ बाबू है, काकू काकी है, ये सगला की है एक छत गनी चरेकता, एक रसोई को खानता एर गुड़ मिल गए रहता, एर आपका जका टाबर होता नहीं बन के अच्छा संस्कार देता, अच्छी बातें बताता, एर हर रिश्ते के बारे में अच्छो बताता, भी सागे किया व्यवहार करनो है, वो आपनों के लग गए मान लो भी न हर अच्छी बिंगी प्रति जानकारी देता, भी रिश्ते प्रति बिंगो के फर्ज है वो भी बताता। जे घरे मान लो कोई बटा हुआ जान तो बिंगे बारे में बताता, बिंगे पगा लागणो, राम राम करनी, बिंगो हाल चाल पूछनो, चाह पानी को पूछनो, ये सारी बातें सिखाता। बनी बात है भाइयों के कोई भी मिनख है वो आपकी माँ के पेट में कौन सीख गया वे, वो आज की दुनिया है आप इन्हें सिखा दिए और भी इन्हें सिखाना पड़ा है परिवार ने। देखो संस्कार रूपी गेणा जके कनोसी वो तो चमकेगो, बाकी करे नहीं के काम तो आप गो है एर सरावणा लोग करे। आज ही बदलती हवा गमा ये बदलता टेम गे बा आपना जका टब्बर है बांगा ध्यान रखनो बहुत ही जरूरी है, बाना अच्छी बातें बताओ, अच्छी आत्मा सिखाओ, अच्छा संस्कार दियो, बडेरा को मान करनो बांगो कान कायदो राखनो, एर आए गए छू अच्छो बर्ताव करनो, हाल चाल पूछनी, रामा श्यामा करनी, पगे लागणो, एर सागे सागे की अच्छी आदत भी मन सिखाओ, टेम छू जागणो एर टेम छू सोनो, अच्छो खाणो पीणो, ताकि टाबरियाँ की है सेहत भी अच्छी बनी रहे, क्योंकि सेहत भी बहुत जरूरी है। बाप ने कह कर न कि पेलो सुख है निरोगी काया, और सागे सागे की है जिकी नशे पत्ते की लत है बिशु बिने दूर रखनो, आ भी एक बहुत ही बुरी आदत है जिकी आपने समाज नाज खान लाग रही है। अच्छी संगत करनी और सागे अपना जका श्रोताओं महापुरुष होया है, अपना महानायक होया है, बांगी जकी कहानियां है बा सुनानी, बंगो जको चरित्र है।

0: सुनियो चाहो प्यारो सो लोक भजन बाई सुगुणांगा बीर। श्रोताओं आपनी जकी मायड़ भाषा है इंगे अंदर अनेक कहानीकार अनेक कविताकार होया है। तो आपनों जको पड़ोसी जिलो है हनुमानगढ़ इमें गांव है परलिको। परलिके की धरती पर कई अनमोल रतन होया है जका मायड़ भाषा को प्रकाश चारों मेर फैलायो है। तो इसे ही मायड़ भाषा के एक कवि की आथा ने काव्य पाठ सुनावा भाई विनोद स्वामी जका नाम है। तो सुनो ओ प्यारो सो काव्य पाठ और लियो आनंद।
1: शीर्षक है आया गया सारू। बाबे भरोसे तो गयड़ी घर री सियान, बाबे भरोसे तो गयड़ी घर री सियान, घरां को नी आटे रो सुआंज, ओ तो बांस बगड़ में सीरो उदारे पायरो, जिको रहेगी भगत सिर आया गया री सियान, आया गया री सियान। आ लंबी कविता है और इंगा कई चित्र है। दूसरो चित्र, काठ मीठ कर द्या दिना ने धक्को, काठ मीठ कर द्या दिना ने धक्को, टेमो टेम मिल्योड़ी लुखी स्वाद बहुत लागे, टेमो टेम मिल्योड़ी लुखी स्वाद बहुत लागे, बांको फेरेड़ी मिल जा तो दियाली सी दुके, रोज राखनी पड़े आया गया निशान, रोज राखनी पड़े आया गया निशान। तीसरो चित्र, काल दड़ियो आंगणो, काल दड़ियो आंगणो, पहली सुआंज करियो जो दादी चल गई, और फेर लाग गयो चौमासो, जाबक फूट गयो, मने तो शर्म सी आवण लाग गई आया गया री, मने तो शर्म सी आवण लाग गई आया गया री। अगलो चित्र है के जेठ रे मिन्ने दोया दो खोलिया, जेठ रे मिन्ने दोया दो खोलिया, गालिया नुआ डोरा, नुवी बनाई दो सोपत, सियाले सारू फकत आया गया री रह जावे श्यान, फकत आया गया री रह जावे श्यान। अगलो चित्र है, रोज लुखी रोटी जलाउंती जब की कोनी संकती, रोज लुखी रोटी जलाउंती जब की कोनी संकती, पण आया गया री सियान रो सवाल, आत ने पकड़ तो गिलोड़ती का नहीं जाऊंता, आत ने पकड़ तो गिलोड़ती का नहीं जाऊंता। अगलो चित्र है के खांड गालू कसीरो, खांड गालू कसीरो, रोटी पौंती करती रही अड़ोच, पण बहुत बारी फकत बांको फेर राखनी पड़ी है श्यान आया गया री, बांको फेर राखनी पड़ी।

श्रोताओं सुनियो ओ प्यारो सो लोक गीत। बात करा आपकी खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी जो आपनों प्रमुख धंधो है, एरा अपनी जकी ज़्यादातर जनसंख्या है इन ऊपर निर्भर करे। खेती बाड़ी में जिया बात करा दानगी बीजाएगी करते टाइम आपने के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दानगी जकी फसल है आ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इम आप जो छोटी सी किसान भाइयों कोई लापरवाही कर दें तो अपने जो उत्पादन है नहीं मी पर बहुत ही ज़्यादा असर फेर है। जी आपने बेहतर और जे बम्पर यानी अच्छी पैदावार चाहिए तो आपने कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। जी पहली बात आए कि हमेशा ही देखिए उन्नत एर प्रमाणित किस्म आए बांगो बीज को चयन अपन करना चाहिए और फेरे भी जांच करनी चाहिए। जकी किस्म आप गए जलवायु है क्षेत्र की माटी है पानी है जकी पानी की उपलब्धता है बिंगे साहब अपन है अपनी वैरायटी चुननी चाहिए। और हमेशा ही क्या जका विश्वसनीय हाइब्रिड बीज अवे संकर बीज जकान बोला या उन्नत प्रमाणित बीज अवे बांगो किसान भाइया ने उपयोग करना चाहिए ताकि वे ज़्यादा उत्पादन ले सके। दूसरी बात आ है किसान भाइयों भी कोई भी आप फसल की जकी बीजांत करा तो जो बीज है बिने उपचारित जरूर करना चाहिए, वो एक बहुत ही बड़ो आपने फायदो है। इशू की जकी बीज की बीमारियां हैं बीजू बीमारियां जकिया ने बोले जिया जड़ गलन है बकानी रोग है आशू बहुत ही बचाव है और बहुत ही आपने फायदो है। और सग सग की बीज की जगह आप उपचार करांगा बीज को तो इनके फंगस को नहीं आवे और आपन की अच्छी फंगीसाइड जिया कार्बेंडाजिम है ट्राइकोड्रमा है आंशू बीज ने उपचारित करना चाहिए। और नमक गज को पानी को घोल है ईशू भी आप उपचारित कर सकें इनमें कि आपने लक्कार जगह खोखला बीज है वे निकल जाएगा तो इन सारू आपन की है 10 सैकड़ा नमक घोल में जे बीजा ना अपन ना खाना चाहिए तो जका बेकार बीज है भी तिरगे के ऊपर आ जासी और अपन बने बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए या जका भारी और बड़ी

या बीज है माना साफ पानी छोगे फिर इस्तेमाल करना चाहिए। और जबकि पौध आप तैयार करा भी मैं भी अपन कई बात की ध्यान रखनी चाहिए। जी हाँ, पौध की उम्र है तो रुपाई के टाइम पौधे की जी हाँ नर्सरी में उम्र की 21-25 दिन होनी चाहिए। ईशू बड़ी उम्र का जो पौधा है माना जी अपन लगावांगा तो भी मैं किए कल्ला जका बने फुटान जी हाँ बोल जा मैंने बाकम बनेगी। एर उखाड़ते टाइम पौध ने बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बीशू एक दिन पहला जब आप उखाड़ा बीशू एक दिन पहला की है जो कि पनीरी बोला इन्हें पानी दे देना चाहिए ताकि माटी नरम हो जाए और जड़ा टूटे ना। और खेत की तैयारी और रुपाई की बात करा तो कद्दू करना चाहिए खेत ने पहला तो अच्छी तरह ताकि जो पानी है वो बराबर इसके और पानी जो जमीन के अंदर ज़्यादा नहरिश है और खतबार जकी कचरों है खरपतवार है भी कम हुए। एर दूरी और गहराई की बात करा तो पौधे शू पौधे की दूरी लगभग अपन ने 15 सेंटीमीटर एर कतार शू कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एर एक जगह पर है किसान भाइयों ने किया 2-3 पौधा लगाना चाहिए। पौधा ने ज़्यादा गहराई में नहीं लगा के अन किए 2-3 सेंटीमीटर यानी देसी आप बात करा तो 2-3 आंगल तई गहराई में रोपना चाहिए ताकि कल्ला अच्छा निकले। टेमो टेम किसान भाइयों संतुलित खाद है उर्वरक है अंगों प्रबंधन भी अपने रखना चाहिए। और आप क्या करांगा माटी की जांच करागे जी हाँ माटी की आप जांच करा लिया तो आपने एक तो किया है एड़ो खर्चो कौन लागे क्योंकि माटी की जांच नहीं करावांगा तो आप बेफालतू का उर्वरक दे रखांगा तो वो नुकसान है। एर आधारगी खुराक है इनको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। खेत तैयार करते टाइम में जब आप आखिरी जुताई करा बिन टाइम की नाइट्रोजन की आधी मात्रा एर फास्फोरस यानी DAP है या SSP है पोटास एर जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा खेत में डाल देनी चाहिए। एर धान में जे जिंक की कमी आ जाए नहीं तो धान में किए खेरा रोग हो जाए तो आपने जिंक जरूर डालना चाहिए। और टेमो टेम की है खरपतवार है आंगो भी निदान करते रहना चाहिए तो ये बातों को ध्यान है जरूर रखना चाहिए। बात आप और भी करांगा पहला सुनाओ प्यारो सो गीत।

श्रोताओं, अब टेम है चौपाल गंदर बाजार भाव को। तो आपने कन्ने सूरतगढ़ मंडी का बाजार भाव है जिसका पूगता होया है। बात करा कणक की, तो कणक अठे बिकी 2375 रुपया। सरसों का अठे भाव उगड़िया 7,117 रुपया। ग्वार अठे बिकियो 5,686 रुपया। तो ये आक्षण भाइयों आज का बाजार भाव जगह थारे तई पूगता करया। और अब आपनों कार्यक्रम की है समाप्ति की ओर है। तो चालते चालते थन आई कहवागा कि परमात्मा सब गए घर में सुख शांति रख है, सब गुज को लाणो बाणो है, बस तो रेवे और टाबर अच्छा संस्कारी बने, माए तांगो केणो मन आराचो जग में नाम रोशन करे। और आखिर में आई कहवागा सगला ने राम राम, राजी रखे राम जी।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्मी भक्ति संगीत।

अभी आपने ए आर रहमान को सुना, फिल्म का नाम जो था अकबर। अब सुनिए इमरान अजीज मैन की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

अभी आप फिल्मी भक्ति संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। आज 1990 को ये जो फिल्म रिलीज हुई थी वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है दिल और 1990 की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था और निर्माता थे अशोक ठकेरिया। फिल्म ने उस दौर में युवाओं के बीच प्रेम, दोस्ती, नोकझोंक और पारिवारिक सम्मान के विषय को नए अंदाज में प्रस्तुत किया था। इसी फिल्म ने आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल कर दिया था। बातें और भी हैं करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सई जाफरी, देवेन वर्मा और राजेश पुरी। इस फिल्म की कहानी राजा और मधु की है। राजा एक साधारण परिवार का लड़का है, जबकि मधु एक अमीर व्यवसायी की बेटी है। कॉलेज में दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में दोनों के बीच लगातार झगड़े और शरारतें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। दोनों परिवारों के बीच अहंकार और सामाजिक स्तर का संघर्ष देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी चुनौती उनके रिश्ते में बन जाती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजा और मधु घर छोड़कर नया जीवन शुरू करते हैं। कठिन संघर्षों के बाद उनका प्रेम परिवारों को बदल देता है और अंततः कहानी सुखद मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और गीतकार थे समीर, और ये एल्बम 1990 का सबसे लोकप्रिय संगीत एल्बम माना जाता है।

दोस्तों, फिल्म की सफलता के बाद आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद करीब से और दिल से लगाया था। बाद में दीवाना मुझसा नहीं और उसके बाद दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था। निर्देशक इंद्र कुमार की ये शुरुआती बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सफल निर्देशकों की सूची में ला खड़ा किया था। फिल्म के संगीत की लगभग हर कैसेट और ऑडियो एल्बम उस समय बड़ी संख्या में बिके थे। 1990 के दशक का ये एल्बम युवाओं की पहली पसंद बना रहा है और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को मिला फिल्म फेयर अवार्ड उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया था। फिल्म की कहानी अमीर गरीब परिवारों के संघर्ष और प्रेम पर आधारित होने के बावजूद कॉलेज रोमांस के कारण युवाओं में बेहद लोकप्रिय हुई थी। आमिर खान ने इस फिल्म में अपने चुलबुले और रोमांटिक अंदाज से युवाओं को प्रभावित किया और चॉकलेट बॉय की छवि को और भी मजबूत किया था।

दोस्तों, फिल्म के कई दृश्यों की शूटिंग जो की गई थी वो महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास की लोकेशन पर हुई थी। और फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके गीतों की ऑडियो कैसेट लाखों की संख्या में बिकी थी।

दोस्तों, प्रेम, संघर्ष और मधुर संगीत से सजी ये फिल्म दिल आज भी 90 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की शानदार अदाकारी और आनंद मिलन के मधुर संगीत ने इसे सदाबहार बना दिया। आज की फिल्म रही दिल, और अपने दोस्त पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही फिल्म से, अब आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। सब कुछ अधिक विस्तार के साथ शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। शुरुआत मुख्य समाचार से। चेन्नई में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में कल मैनचेस्टर में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने 5 पदक जीते। फीफा विश्व कप के 10वें दिन 3 मैच खेले जाएंगे। कल अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ऑकलैंड में FIH नेशंस कप में भारत ने चिली को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताब के लिए कल मेजबान न्यूजीलैंड से मुकाबला। और मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में अश्मिता चालिया की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त। शुरुआत क्रिकेट के साथ। चेन्नई में भारत ने तीसरे

0: अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को अब से कुछ देर पहले 9 विकेट से हरा कर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल 86 गेंद में 110 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 79 रन की धुआंधार पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने 102 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उधर हार्दिक पांड्या चोट के कारण इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय ओडीआई क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। वह अफगानिस्तान श्रृंखला से पहले लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें पूरी तरह फिट होने में अभी और समय लगेगा। उधर मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे विराट कोहली के बारे में फैसला दोबारा उनकी जांच के बाद लिया जाएगा। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन अब उसके सामने एक कड़ी और बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट।
1: पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन और दूसरे मैच में कमजोर नीदरलैंड्स को 95 रनों से करारी शिकस्त देने वाली भारतीय महिलाओं के लिए इस विश्व कप की सबसे कठिन चुनौती दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से पार पाना है। ऐसे में इस खतरनाक टीम के सामने जीत के लिए टीम को हर हाल में न सिर्फ अपनी लय को कायम रखना होगा बल्कि मनोबल को भी ऊंचा बनाए रखना होगा। ये मुकाबला भारतीय बल्लेबाजी और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर भारत की बल्लेबाजी को कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की स्मृति मंधाना की काबिलियत और कप्तान हरमनप्रीत के अनुभव के साथ शेफाली वर्मा और ऋचा घोष की आक्रामक बल्लेबाजी अहम होगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें कप्तान लॉरा वोलवार्ट और मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। पहले दो मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय गेंदबाजों को मैनचेस्टर की स्पिन फ्रेंडली पिच पर धार बनाए रखनी होगी। ऐसे में अनुभवी दीप्ति शर्मा और श्रीचरण एक बार फिर टीम इंडिया की मजबूत कड़ी साबित हो सकती हैं। शेफाली वर्मा भी स्पिनर के रोल में फिर से फिट हो सकती हैं। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि टीम किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है। भारत के पास अच्छी तेज और स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। दूसरी पिछली बार T20 विश्व कप फाइनल खेल चुकी विरोधी टीम के पास दबाव से निपटने का काफी अच्छा अनुभव है। दोनों टीमों के पास अच्छे हरफनमौला हैं और ये इस ग्रुप का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। 5 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम अभी तक T20 विश्व कप नहीं जीत सकी है। इस मैच में जीत भारतीय टीम को न सिर्फ ग्रुप में और बेहतर स्थिति में पहुंचाएगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मानसिक मजबूती भी देगी। कोई शक नहीं है कि जीत के लिए दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारतीय जूनियर निशानेबाजों ने 5 पदक जीते। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: शूटिंग में भारत हमेशा से अच्छा करता रहा है और आगे भी भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। इसका संकेत ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिल रहा है। जूनियर निशानेबाजों का लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक जीता। उधर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रोहित कानियान ने सटीक निशाने साधते हुए सोने का तमगा जीत लिया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन विमेन इवेंट में प्राची गायकवाड़ ने 354.7 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने टीम इवेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। रोहित कन्यान, वेदांत नितिन वाघमारे और हितेश श्रीनिवासन की टिकड़ी मिलकर भारत को पोडियम पर जगह दिलाई। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन टीम इवेंट में भारत को एक और कांस्य पदक समीर, अभिनव चौधरी और साहिल चौधरी की टिकड़ी ने दिलाया। चैंपियनशिप में भारत अब तक कुल 8 पदक जीतकर सबसे आगे है। इससे पहले सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता जबकि हिमांशी ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने मिलकर कुल 1700 का स्कोर बनाया और स्टैंडिंग में टॉप पर रही और टीम का खिताब जीता। इन पदकों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य

0: पदक शामिल है। भारतीय टीम ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स दोनों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ चैंपियनशिप में मजबूत शुरुआत की है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के 10वें दिन आज 3 अहम मैच खेले जाएंगे। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच महत्वपूर्ण मैच होगा। यह मैच कांटे का रहने की उम्मीद है। एक अन्य मैच में जर्मनी की टीम आइवरी कोस्ट का सामना करेगी। तीसरा मैच इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप डी में मेजबान अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में

0: अन्य मैच में जर्मनी की टीम आइवरी कोस्ट का सामना करेगी। तीसरा मैच इक्वाडोर और कुरासाओ के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। ग्रुप सी में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में शीर्ष पर जगह बना ली। इसी ग्रुप में दिग्गज ब्राजील की टीम ने हैती पर एकतरफा जीत हासिल की। कैसे रहे ये मुकाबले, जानते इस रिपोर्ट के जरिए।
1: सह मेजबान अमेरिका ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ एक तरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी बल्कि शान से राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली टूर्नामेंट की दूसरी टीम बन गई। सिएटल स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत से ही अमेरिका ने आक्रामक खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर कैमरन बर्गेस फोलरिन बोलागुन के शॉट का बचाव करते हुए अपना ही पोस्ट में गेंद डाल बैठे और उनकी टीम 1-0 से पिछड़ गई। अमेरिका ने पहले का अंत होने से ठीक पहले उस समय अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया जब मैच के 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट ने शानदार शॉट लगाया। हालांकि उनका ये शॉट गोल पोस्ट में नहीं पहुंच सका लेकिन सर्जिनो की नाकाम कोशिश को कैमरन बर्गेस ने बेहतरीन हेडर मारते हुए सफलतापूर्वक गोल में तब्दील कर दिया और अमेरिका को मैच में 2-0 की बढ़त दिला दी।
2: The goal scorer was not in offside position.
3: USA 2, Australia 0.
1: ये बढ़त अंत तक कायम रही और अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 में लगातार दूसरी जीत के साथ नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली। उधर फॉक्सबोरो में खांचे के मुकाबले में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। बोस्टन स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही मोरक्को ने ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। मोरक्को की तरफ से मुकाबले का एकमात्र गोल इस्माइल सेबारी ने मैच शुरू होने के मात्र 71 सेकंड बाद ही कर दिया।
2: Saibari again! What Moroccan magic he is bringing to this World Cup! Morocco have their first win of this 2026 World Cup.
1: मैच के शुरुआत में ही बढ़त हासिल करने के बाद टीम ने पूरे मुकाबले में खेल की गति को अपने नियंत्रण में रखा। पहले गोल के बाद भी मोरक्को की टीम ने कई मौके बनाए लेकिन दूसरा गोल नहीं कर सकी। उधर फिलाडेल्फिया में बेहद मजबूत ब्राजील ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 3-0 से हराया। इस जीत के नायक मैथ्यूज कुन्हा रहे जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। इस जीत के बाद गोल अंतर के आधार पर ब्राजील ने ग्रुप सी में पहला स्थान हासिल कर लिया। मैथ्यूज कुन्हा ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत को बेहद खास बनाया। उनके साथ विनिसियस जूनियर और राफिन्हा का प्रदर्शन भी दमदार रहा। ब्राजील के लिए मैच का पहला गोल 23वें मिनट में आया जब हेंस डेल क्रोइक्स का क्लियरेंस शॉट कुन्हा से लगकर गोल पोस्ट में चला गया। पहले हाफ के अंत से 9 मिनट पहले कुन्हा ने ब्राजील की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में विनिसियस जूनियर ने ब्राजील के लिए मैच का तीसरा गोल किया। लगातार दूसरी हार के साथ ही हैती की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। कैलिफोर्निया में पराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्कियों को 1-0 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में इस जीत के साथ पराग्वे ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। वहीं हार के साथ ही तुर्की का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। मैच का एकमात्र गोल मटियास गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद किया। यह मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल भी है। गैलार्जा ने करीब 25 मीटर की दूरी से जोरदार शॉट लगाया और तुर्की के गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा।
2: What a start! What an incredible start! Paraguay in front. It's the fastest goal of the tournament. Turkey are heading home at the end of the group stage.
1: पराग्वे को हाफ टाइम से ठीक पहले बड़ा झटका लगा जब मिडफील्डर मिगुएल एल्मिरोन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। पराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें फीफा के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली। इसके चलते पराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद पराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया। गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्की को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एफआईएच नेशंस कप हॉकी में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल

0: कल खेला जाएगा। सुनते हैं अलका की ये रिपोर्ट।
1: अगले साल प्रो लीग में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही भारतीय शेरनियों ने नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए अंतिम चार के मैच में विरोधी चिली की टीम को चारों खाने चित कर दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने चिली पर शुरू से ही ताबड़तोड़ हमले किए। हमला इतना तीखा और सटीक था कि चिली की टीम कभी चिल कर ही नहीं सकी। भारत की जीत की नायिका नवनीत कौर और दीपिका रही। नवनीत कौर ने मैच के छठे और तेरहवें मिनट में गोल दाग कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दीपिका ने 14वें और 18वें मिनट में लगातार दो गोल करके भारतीय बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक ही चिली की टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन भारतीय लड़कियों ने रहम नहीं बरती और दूसरे हाफ में भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे।
0: और उधर रोटरडम में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के डच चरण का समापन मेजबान नीदरलैंड्स के साथ मैच खेलकर करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत जूनियर पुरुष कलात्मक जिम्नास्टिक टीम ने आज चीन के जूनी में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हर्षित दामोदरन, निषाद नरवाने, SK नबी गली, अक्षत बजाज और मोहम्मद जैद अंसारी की युवा भारतीय टीम ने महाद्वीप की कुछ मजबूत टीमों के सामने शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। चीन के शाओजिंग में दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने कांस्य पदक जीता और इसके अलावा भारत की मिक्स्ड 4x400 मीटर टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मलेशिया के सारावाक में चल रही तीसरी एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। और हम आपको यह भी बताएं कि अश्मिता चालिया के हार के साथ ही मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज अश्मिता को दक्षिण कोरिया की पार्क गायुन ने 17-21, 9-21 से हराया। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। ओलंपिक में दो रजत पदक जीतने वाले नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो पदक जीतने के लिए काफी नहीं था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की

0: प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह

0: आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों समन्वयकों पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। December 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है।

0: और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the

0: अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: चित्र भारती।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया।

आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की

0: आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए, एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म

0: इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे, VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक

0: एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी भैया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मेरी भैया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मूर्ति

दृष्टि पर हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas.

0: प्रभास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर एंड श्रीमती कुमुदनी मुंदकुर, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो व्हेन डॉक्टर विवेक शोकेसेस हिज आर्ट ऑफ हिस्टोरिक स्टेजेस लाइक द तानसेन समारोह एंड पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह, द लिसनर्स आर लेफ्ट अटरली स्पेलबाउंड. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: डॉक्टर विवेक करमहे अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे. द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा.
0: Dr. Vivek Karmahe is commencing his recital with Rag Shri. The Vilambit composition is set to Tilwara Tal with the lyrics Vari Jaun Re Tumpe. The Drut composition is in Teen Tal with the lyrics Chalo Re Mai Ram Siya Darshan. Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है 366.3 मीटर अर्थात 800। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं।

0: इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।